0: pena. DJ Blastica.
1: रेडियो इतिहास से प्रथम वतावटा लांकेय सुपेरी डीजे थारू मुहुनट मुहुन गैटना डीजे अटैक शो एका
0: नेट एफएम डीजे नाइट फेस टू फेस अटैक शो अटैक शो
1: लंकाओ मदान वीलंग डीजे स्टारविन न कहमति नाम ओया डीजे प्ले करने पहेदली वीडियो आक दैन मापिटो व्हाट्सएप करने
0: Binduai Hatsi Ekolhai Anu Pahai Anu Pahai Anu Paha Net FM DJ Night Face to Face Attack Show Hater and Navetta Muhunata Muhuna Tarangavadine Matara Districtaya DJ Anishka Kurunagala Districtaya DJ Shenu Beats
2: Brought to you by Rasa Nahara Pinayanu My Cola Vethin My Guava My Tamarind My Blueberry Atulu Rasa Pella Kills Kagils Apiko Satoso Supiri Velanda Salvalin My Cola Aperate Apema Deyak
0: Net FM DJ Night